0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6, UCP ki duniya.

वतन तुझे रोशनी की दुआएं, तेरे कोह दमन गुलनार और हवाएं गुलबहार। जब तक ये जहां है तू शाद सरसब्ज और खुशहाल रहे। अल्लाह तेरा निगहबान और तेरे

ए वतन, सागर की हर लहर की है ये दुआ कि तेरे रेगजारों में सुर के रंग फूटे, जंगल बयाबानों में मोहब्बत के नगमे गूंजे, भिटाई और सचल के ये

सारी वफाएं तेरे लिए और तू मेरी जीनत, तुझी से मेरा सारा हुस्न, तेरी मोहब्बत मेरा बेशबहा सरमाया और मेरी जानो माल सब तुझ पर कुर्बान।

हरियालियाँ और फूलों से लदी रहें डालियाँ, ये प्रेम धरती, ये वलियों का देश, यहाँ रब ने घर घर में उतारी हैं खुशहालियाँ।

वतन तुझे रोशनी की दुआएं, तेरे को हो दमन गुलनार और हवाएं गुलबहार। जब तक ये जहां है तू शाद सरसब्ज और खुशहाल रहे। अल्लाह तेरा निगहबान और तेरे दुश्मन

0: तुझे।
1: ए वतन, सागर की हर लहर की है ये दुआ कि तेरे रेगजारों में सुर के रंग फूटे, जंगल बयाबानों में मोहब्बत के नगमे गूंजे, भिटाई और सचल के ये धर

वतन, तेरे कोहसार, तेरी सरहदों के मुहाफिज, तेरे दरियाओं और नदियों का पानी जमजम जैसा। मेरे पाक वतन, अगर मैं जान भी कुर्बान कर दूं तो भी

मेरी सारी वफाएं तेरे लिए, और तू मेरी जीनत, तुझी से मेरा सारा हुस्न, तेरी मोहब्बत मेरा बेशबहा सरमाया, और मेरे जानो माल सब तुझ

हरियालियां और फूलों से लदी रहें डालियां, ये प्रेम धरती, ये वलियों का देश, यहां रब ने घर घर में उतारी हैं खुशहालियां।

0: University of Central Punjab, FM 92.6, UCP ki duniya.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
2: ایک
3: نئی
4: سوچ
3: एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
3: जब मिलती है लगन
4: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया
4: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6
3: सुनते रहिए
5: अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द फैकल्टी आर प्रोग्राम टुडे वी हैव सम अमेजिंग गेस्ट विद अस जिनके साथ हम इंग्लिश लर्निंग को लेके मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी इंग्लिश लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सो स्टे ट्यून्ड विद अस आज हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट गेस्ट हैं सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू देम एट द फर्स्ट वी हैव मैम तैयबा राना शी इज़ डेप्यूटी मैनेजर एट इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर इनका एक्सपीरियंस इंग्लिश लर्निंग और मैनेजमेंट के फ्यूजन को समझने में बहुत मदद देगा And next we have Ma'am Sheba Sultan. She is lecturer at UCP and team lead writing support center. So we will start our question answer session and learn a lot from that. So my first question ma'am. Students ka sabse bada misconception English learning ko leke kya ho sakta hai aur hum isko kaise change kar sakte hain?
6: Achha, thank you Habiba for inviting me and asking my opinion about this very pertinent question. Achha, isme main ye kehna chahungi ki hamare yahan pe jo misconceptions hain wo English language learning ke hisab se hain. Kyunki hamare English language ko jo learning ka tarika schools aur colleges mein hai wo us level ka nahi hai ki jaise ki English bachchon ko padhni chahiye. English jo hai wo ek subject nahi hai. English ek skill hai. जिसमें कि हम मुख्तलिफ स्किल्स में मास्टरी हासिल करते हैं जैसे कि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग ठीक है तो क्रिटिकल थिंकिंग तो हम कहीं सोचते ही नहीं है ना क्योंकि वी डोंट अलाउ आवर स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन एंड उनकी वो आदत डेवलप हो चुकी होती है जब तक कि वो हमारे पास यूनिवर्सिटी में आते हैं और वो बिल्कुल एक लेक्चर स्टाइल से पढ़ के आ रहे होते हैं यहाँ पे हम उनको एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंस करवाते हैं आपको मैं बताऊँ और ये आपके लिए बहुत शायद नई बात भी हो लेकिन नहीं भी हो क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं और आप भी पढ़ रही हैं उस तरह से हमने ELC में जबकि डॉक्टर हबीब काजी साहब ने ज्वाइन किया है तो उन्होंने इंग्लिश को एक मॉडर्न जो है जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने उसको एक मॉडर्न फुटिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया है हम लोग जो हैं वो एक कैम्ब्रिज का जो है वो डिज़ाइंड सिलेबस या कोर्स पैक आप उसे कह लें हम वो यूज़ करते हैं दैट इज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड और हम उसमें इन स्किल्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया इनके ऊपर फोकस करते हैं और हम बच्चों को क्लास में लिसनिंग करवाते हैं थैंकफुली वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ इन यूसीपी हमारे पास ऑडियो वीडियो हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ क्लास में अवेलेबल है और प्रोजेक्टर्स हैं मींस वी कैन हैव अ गुड यूज़ ऑफ व्हाट सॉफ्टवेयर वी हैव ओके तो हम बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि लिसनिंग एक्टिविटीज़ क्लास में करवाते हैं. इसके अलावा जो है हमारी तमाम क्लासें जो हैं वो एक्टिविटी बेस्ड हैं. स्टूडेंट्स जो हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और वो खुद मतलब इट इज़ मोर ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड एंड लेस ऑफ टीचर सेंटर्ड. जबकि जो हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम है एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि उसमें क्या है कि वो तो एक लेक्चर स्टाइल है कि टीचर्स आते हैं और वो जो भी टॉपिक होता है वो बच्चों को क्लास में करवा के बस बोर्ड का यूज़ किया एंड देन दे कम आउट ऑफ और स्टेप आउट ऑफ द क्लास. बट हम क्या करते हैं, वी गाइड द स्टूडेंट्स, वी टेल देम दैट हाउ दे आर गोइंग टू यूज एंड हाउ दे आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट देयर लैंग्वेज और देयर लैंग्वेज लर्निंग इन टू द एक्टिविटीज एंड देन दे देमसेल्व्स डू इट. तो ये एक हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है और हमें इसमें अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, बच्चे इसको लर्न कर रहे हैं और उससे इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, होपफुली वो फील कर रहे हैं. और
5: मैम जैसे कि आपने बोला कि पीछे से वो एक टिपिकल जो काफ़ी अरसे से लर्निंग सिस्टम चल रहा है, तो स्टूडेंट्स जब इधर आते हैं तो इनको एकदम बिल्कुल नया इन्वायरमेंट मिलता है इंग्लिश लर्निंग को लेके, तो समटाइम स्टूडेंट्स को उस चीज़ में ढलने में टाइम भी लगता है. तो टीचर्स किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करते हैं कि स्टूडेंट्स उस इन्वायरमेंट को अच्छे से कोप अप कर सकें?
6: अच्छा, हमारा चूंकि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वी टेक इन टू अकाउंट कि ये कैसे होगा. उसमें ये है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो ग्रुप एक्टिविटीज़, पेयर एक्टिविटीज़ और उससे हेल्प लेते हैं. और चूंकि ये सारा सिस्टम ही जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड पेयर एक्टिविटीज़ और डिस्कशन पे बेस करता है, तो उसमें ये है कि चूंकि स्टूडेंट्स दे आर कम्फर्टेबल विद देयर फेलो स्टूडेंट्स, विद देयर पीयर्स, और पीयर चेकिंग जो है एक बहुत हमारा एक ख़ास आप कह लें कि वो है. उसमें बच्चों को ये डर नहीं होता कि टीचर हमें जो है वो कोई पिनलाइज करेगी किसी चीज़ के ऊपर या करेगा, ठीक है. तो वो एक अब एक इन्वायरमेंट, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में सीखते हैं, ठीक है. डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, आई एम नॉट सेइंग कि वो एकदम वो जो है वो यूज टू हो जाते हैं और वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं. इट टेक्स टाइम बट विद इन 4-5 weeks दे गेट इन टू दैट सिस्टम और हम फिर उसके मुताबिक उनको चलाते हैं. और हमने उसमें एक अपनी प्रोग्रेशन भी रखी हुई है, यानी अच्छा. कि जो इंग्लिश वन है उसमें हम उनको बेसिक्स के ऊपर फोकस करते हैं और जो है वो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि वो पैराग्राफ राइटिंग सीखते हैं. दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, मींस ग्रामर और सब चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं ना, उन्होंने तो चलते रहना है. उसके बाद जो इंग्लिश टू में वो जाते हैं तो वो फिर ऐसे राइटिंग एटलीस्ट 5 paragraph ऐसे को वो जो है वो करते हैं, उसमें मास्टरी लेने की कोशिश करते हैं. एंड देन वी हैव डिजाइंड आर इंग्लिश 3 इन सच अ वे जो कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज है, ESP. वो हम फिर उसको कनेक्ट कर देते हैं हर फैकल्टी के मुताबिक. अगर कोई मीडिया की फैकल्टी का बच्चा है तो उसका तमाम जो कंटेंट है वो मीडिया रिलेटेड है. अगर लॉ की फैकल्टी का बच्चा है तो द कंटेंट इज लॉ रिलेटेड. अगर IT का है तो वो IT से रिलेटेड है. तो फिर वो जो है हम उनको तैयार करते हैं कि वो जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो वो लैंग्वेज की जो फंक्शनैलिटी है उसको कैसे यूज कर सकते हैं.
5: आई एम हैप्पी टू हियर दैट के इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टूडेंट्स के उस एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए. मैम शिवा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि UCP एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन से स्टूडेंट्स आते हैं, इवन के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं. तो कुछ स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड जो है रूरल एरिया से होता है, जैसे सिंध हो गया, साउथर्न पंजाब, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स कैसे इफ़ेक्टिव टास्क दे सकते हैं कि उनको वो चीज़ें इजी लगें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे होते हैं.
7: जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के सारे हिस्सों से आते हैं और उसमें हम यही स्ट्रेटजीज अपनाते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा एरर करेक्शन को स्टूडेंट के ऊपर रेप्रिमांड नहीं करते कि स्टूडेंट्स को हम कंफर्टेबल रखते हैं. और UCP का जनरल इन्वायरमेंट भी इस तरह का है कि वी अप्रिशिएट द वेरियस कल्चर्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि कल्चरल डे मनाया जाता है, हर स्टूडेंट का जो जिस खित्ते से वो आए हैं उनके कल्चर को अप्रिशिएट किया जाता है. तो क्लासरूम में भी हमारा ये एक स्टाइल है कि अगर जो स्टूडेंट जिस भी एक्सेंट में बात करता है या उनकी जैसी भी प्रोनंसिएशन है, हम उसको इनक्रेज करते हैं कि वो उसको जो है वो बेशक स्टैंडर्डाइज इंग्लिश की तरफ लेके चलें, लेकिन देर इज़ नो कल्चर ऑफ क्रिटिसिज्म इन अ वे दैट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द स्टूडेंट्स. वी इनक्रेज आर स्टूडेंट students to speak with their accents. We encourage them to improve their pronunciation, or rather to take their pronunciation towards standardized English with the passage of time. तो एकदम से हम उनको नहीं बम्बार्ड कर देते चीज़ों के साथ, हम उनको उन्हीं के स्टाइल में लेके चलते हैं. और ये जैसे कि मैम ने बताया है कि वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़, तो इवन हमारी जो एंड ऑफ सेमेस्टर की प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होती हैं वो ग्रुप में हम स्टार्ट करते हैं. सो वी गिव अ चॉइस टू द स्टूडेंट्स कि आप सोलो प्रेजेंटेशन करना चाहें तो कर लें, लेकिन ग्रुप में ये होता है कि बच्चों को एक दूसरे की सपोर्ट मिलती है.
5: यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मैम से क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे. तब तक सुनते रहिए FM 92.6.

0: University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, एंड आई एम योर होस्ट उम्मे हबीबा। तो हम अपने क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। मैम तैयबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने बोला कि हमें बुक रीडिंग की हॉबी डेवलप करनी चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल हम सोशल मीडिया के अंदर इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो बुक रीडिंग लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग हो गया ना, तो उस चीज़ को हम अपने लिए कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं?
2: अच्छा, रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बुक्स ही पढ़ें, और आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, आप जो है न्यूज़पेपर जो है वो सब अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और न्यूज़पेपर्स में, और स्पेशली उनके जो संडे मैगजीन्स हैं, उसमें बहुत कुछ आता है हर तरह का, ठीक है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और हर तरह का, जो कि स्टूडेंट्स को मोस्टली इंटरेस्ट की उनकी टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप गुड रीड्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप किंडल पे जा सकते हैं, आप PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उस तरह कंफर्टेबल हैं, डेफिनेटली आजकल की जनरेशन उस तरह कंफर्टेबल है, तो वो, और इसमें बस बेसिक चीज़ ये है कि आप बेशक एक पेज पढ़ें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने जी पूरी पूरी वो। और फिर दूसरी बात ये है कि एक और चीज़ जो कि हम यूनिवर्सिटी में भी है, और यूनिवर्सिटी हमारा जो फैकल्टी है लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, हमने रीडिंग सर्कल्स बनाए हुए हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इन रीडिंग सर्कल्स में आए। उसमें ये होता है कि कोई एक बुक चूज कर ली जाती है और उसके चैप्टर्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। उसमें ये होता है कि उस पर फिर डिस्कशन होती है, और किसी भी राइटर को भी बुलाया जाता है समटाइम्स, और टीचर्स तो होते हैं, तो एक ज़बरदस्त सी डिस्कशन जब होती है तो बच्चों का खुद ब खुद स्टूडेंट्स का जो एक इंटरेस्ट है वो उसके अंदर डिवेलप हो जाता है। और यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, स्टूडेंट्स अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बाई यूजिंग ऑल दीज एवेन्यूज।
1: तो मैम शीबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि स्टोरी टेलिंग स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन को किस तरह इफेक्टिवली इम्प्रूव कर सकते हैं?
3: देखिए, जो हम बात करें रीडिंग की, राइटिंग की, तो ये एक्चुअली दीज आर यू कैन कॉल देम लाइक एक्सरसाइजेस फॉर योर ब्रेन। तो इसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए होता है, राइट? कि जो बंदा जिम जाएगा
1: जी,
3: उन्हीं के जो मसल्स हैं वो टोन होंगे, बाकी जो जिम नहीं जाएंगे उनके मसल्स टोन नहीं होंगे, राइट? तो अगर हम एफर्ट करेंगे, स्टोरी टेलिंग के एफर्ट करेंगे, स्टोरी रीडिंग के एफर्ट्स करेंगे, तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर अप होते हैं और वो डिवेलप होते हैं। स्टोरी टेलिंग एक डिसिप्लिन है, उसमें ये होता है कि लोग एक तरीके से एक लय में एक नैरेटिव बताते हैं बैठ के। और जो हमारा करंट जो लिटरेचर है वो शुरू ही स्टोरी टेलिंग से हुआ था। जो पुरानी, जो जैसे आपने सुना होगा पिशावर में है किस्सा खानी बाज़ार, तो उसमें ये होता था कि पुराने जो ट्रेडर्स होते थे वो तजारत करते हुए जब ट्रैवल करते थे, तो वो शाम के टाइम उन्होंने बैठना होता था, उन्होंने आराम करना होता था, तो बैठते थे और आग जली होती थी क्योंकि मौसम ठंडा जो होता था, एंड दे वो टेल स्टोरीज। तो वो कोई आम कहानियाँ नहीं होती थी, वो पुराने वॉर्स की कहानियाँ और ग्रैंड टेल्स, और जो पुरानी फिर नज़में जो बनी, जिसको अंग्रेज़ी में हम ओड्स कहते हैं तो, और एलिजीज़ कहते हैं, वो लंबी कहानियाँ हैं जो पुराने लोग बताते बताते इस मतलब एक पॉइंट पे आए कि वो उसको किसी ने लिखना शुरू किया। सो स्टोरी टेलिंग में आपका कल्चर प्रिजर्व होता है, स्टोरी टेलिंग में आपकी वैल्यूज़ प्रिजर्व होती हैं, और स्टोरी टेलिंग में जो बता रहा होता है कहानी वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक बयानिया करने की उसकी प्रैक्टिस होती है। सो ये एक डिसिप्लिन है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, और ये आपके हर फील्ड में यूज़ होता है। देखें, अगर आप लॉ में, जब आपका मूट कॉम्पिटिशन होता है, जब एक वकील जो है वो अपना केस लड़ रहा होता है, तो दे एम्प्लॉय स्टोरी टेलिंग। आप मार्केटिंग में जाएँ, जो बिजनेस के लोग हैं, तो पिच जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली टेलिंग अ स्टोरी and selling your product. So this is storytelling. ये इसके फवायद हैं और ये इसकी थोड़ी सी background है।
1: मैम, जैसे कि हमें English proficiency test आजकल देखने को मिलता है, तो आपको लगता है कि जो English proficiency test है वो वाकई ही एक person की abilities को accurately reflect करता है कि उसका कितना potential है?
3: ये एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है कि जी टेस्ट ग्रेड इम्पॉर्टेंट है या काबिलियत इम्पॉर्टेंट है, क्या ग्रेड इंसान की काबिलियत को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, क्या वो सारी कंडीशंस जो एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट की होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं या नहीं करती हैं, राइट. लेकिन उसमें जो एजुकेशन की जो थियोरी है या फिलॉसफी है उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें कुछ ना कुछ तो एक तराजू चाहिए ना किसी चीज़ को मेजर करने के लिए. तो टेस्ट एक वे टू मेजर है, एक तराजू है जिसके ऊपर आप रख के देखते हैं कि एक कैंडिडेट जो है वो इन कंडीशंस के अंदर बैठ के क्या इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर सकते हैं या नहीं. बेशक के वो कंडीशंस अननेचुरल होती हैं, टेस्ट का स्ट्रेस होता है, राइट, बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी एक कैंडिडेट की, एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी ट्रेट सामने आते हैं कि उनमें कितनी रिजिलियंस है, उनका कितना डिसिप्लिन है, उनकी इवन टू सर्टेन एक्सटेंट मेमोरी रिटेंशन कितनी है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है. तो टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑफकोर्स उसके ज़िंदगी सिर्फ टेस्ट ही नहीं है, तो आप सिर्फ एक टेस्ट की बिना पे एक इंसान की पूरी काबिलियत को तो नहीं मेजर कर सकते, बट इट इज़ क्वाइट वी कैन से हेफ्टी वे टू मेजर स्टूडेंट्स पोटेंशियल.
1: तो मैम शीबा, देखें जैसे हम देखते हैं आजकल, वैसे तो हम इस चीज़ को मानते हैं कि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन की तरफ आते हैं तो एज अ प्रोफेशनल स्टडी वो इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे. वैसे वो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज समझ रहे हैं. तो आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि एज अ प्रोफेशन जो है इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए किस तरह रहता है, और अगर कुछ स्टूडेंट्स एज अ प्रोफेशन इंग्लिश लैंग्वेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आप क्या एडवाइस देंगी?
3: एज अ प्रोफेशन देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया के हर कोने में यूज में, पूरी दुनिया की जो नॉलेज है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुकी है. इंग्लिश लैंग्वेज इतनी हैवी हुई इस तरह से कि जिनकी वो लैंग्वेज थी उन्होंने उसके अंदर सारी चीज़ें समेट ली, राइट. आपने कोई रेसिपी पढ़नी है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, आपने कोई मैनुअल देखना है किसी भी प्रोडक्ट का वो सबसे पहले इंग्लिश में है, आपने कोई भी लॉ बनाना है वो आप जाके तो इंग्लिश में ही आ जाके वो बनता है. सो इंग्लिश का जो वेट है वो अभी तक कम नहीं हुआ. जो लोग इंग्लिश में एक कह सकते हैं प्रोफिशिएंसी या एक्सीलेंस रखते हैं, ये एक बहुत हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज दे हैव एक्सेस टू द नॉलेज दैट इज अवेलेबल इन द लैंग्वेज. सो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को चूज करते हैं एज देयर प्रोफेशन, दे एंड अप हैविंग अ एडवांटेज एनी हाउ. इसको आप किसी भी फील्ड में ले लें, आप इंग्लिश की डिग्री करते हैं, लोग बिजनेस में जाते हैं, लोग साइकोलॉजी में जाते हैं, लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं,
1: उनकी प्रोफिशिएंसी होती है, मतलब क्योंकि इंटरनेशनली स्कोप बन जाता है
2: लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाते हैं. और जो ये बात है ना, हम अभी ELC के हवाले से कर रहे थे, इसमें ये है कि हमने जहाँ पे और हम सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पे हम हमारा बहुत रोल है कि हम बहुत सी वर्कशॉप्स दे रहे हैं, नॉट ओनली टू स्टूडेंट्स बट टू टीचर्स एज वेल. ठीक है, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको जो है LIC जो है UCP में और CPE उसके थ्रू डिफरेंट वर्कशॉप्स में भी इन्वॉल्व किया जाता है. तो मैं चूंकि मैनेजमेंट में हूँ तो मैं थोड़ा सा उधर की बात भी करूँगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑल दो और ये भी बताता है कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज की, जो आप पहले क्वेश्चन मिस शीबा से कर रही थी, वो इम्पोर्टेंस है तो हमें हर चीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है. अगर ये इम्पोर्टेंस ना हो तो हमें इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व ना किया जाए ना, बिकॉज लैंग्वेज इट्सेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. और फिर इसके अलावा हमने पिछले सेमेस्टर में CPE के ही प्लेटफॉर्म से, जो कि UCP में है, उससे हमने जो है IELTS और कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज भी ऑफर किए थे. वो पेड थे लेकिन वो भी हमने ऑफर किए.
1: वो तो देखा जाता है ना कि जैसे IELTS का सिस्टम भी बेस करता है लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो UCP के अंदर भी जो एक कोर्स पैक चलाया जा रहा है वो भी उसी पे बेस करता है, तो स्टूडेंट्स के लिए बाद में इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा आसानी होती है.
2: यस, यू आर राइट.
1: तो मैम तैयबा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी या कोई ऐसा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हूँ.
2: अच्छा, मैं अभी रिसेंटली बड़ा खुश हुई, मेरे एक स्टूडेंट थे और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया उनकी एक शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखी तो, और मतलब जब उन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ पे और अब वो बीएस करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे तकरीबन 8 ईयर्स हो गए हैं यूसीपी में, तो वो जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो ही वॉज सो शाई इवन टू स्पीक समथिंग और राइट, और लैंग्वेज इतनी आप कह लें कि वो बिल्कुल बेसिक लेवल की थी कि वो ही ऑलवेज सेज टू मी कि आप प्लीज उर्दू में क्वेश्चन ले लिया करें, क्योंकि आई एम वेरी अ बिट स्ट्रिक्ट कि मैं कहती हूँ कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं ना क्लास में और ये वो इस तरह। तो मतलब वो उस तरह के लेवल का बच्चा था कि एक तो शाये भी बहुत, एक वो उसको ना वो सारा। और अब जब बीएस करने के बाद उसने अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखी और मुझे कहा कि आप इस पे रिव्यू दें अपना, तो इट वाज रियली मुझे फील हुआ कि शायद कहीं मैंने भी कुछ मेहनत तो उसी की है डेफिनेटली कि वो यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद यूसीपी ने और मैंने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसको यहाँ तक लेके आने में। तो ये मैं आई फील वेरी प्राउड ऑफ।
1: एक अच्छा टीचर एक स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखा जाता है, पढ़ाई से हटके वो आपको जिंदगी के मामलात में भी बहुत सी गाइडेंस देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यूसीपी में ऐसे बहुत से फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स ना सिर्फ एजुकेशनल बल्कि अपनी बाहर की जिंदगी में भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैम शीबा सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू इफ यू वांट टू टेल एनीथिंग।
3: जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स शायरी करते हैं, दे राइट स्टोरीज, दे आर एबल टू रिप्रेजेंट अस। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स गए थे एक मूड कंपटीशन में इस्लामाबाद में एंड दे वर एबल टू विन द कंपटीशन, और हम लोग खुद भी अपने टीचर्स का ही प्रोडक्ट है ना। तो आई थिंक यूसीपी में हमारी बहुत कोशिश है एंड आई रियली अप्रिशिएट द एनवायरनमेंट ऑफ यूसीपी। एक बहुत ही कंडक्टिव एनवायरनमेंट है जिसमें लोग पढ़ते हैं और एन्जॉयमेंट भी होती है, और इसमें एक मेंटोरशिप हमारा चलता है, बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स की मेंटोरिंग करते हैं। और इस तरह से ऑफकोर्स देखें स्टडीज, बेशक लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, चाइनीज हो या कोई भी और डिसिप्लिन हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। ईजी तो है ही नहीं, अगर ईजी होती तो फिर इसका कोई ऑनर नहीं होता। आखिरी दिन ग्रेजुएशन पे जब स्टूडेंट्स को उनका गाउन होता है, उनका मोटर बोर्ड होता है, उनको जब डिग्री दी जाती है तो वो एक ऑनर है। तो वो ऑनर आसानी, कोई भी ऑनर आसानी से नहीं मिलता। तो मेहनत से नहीं डरना है, मेहनत तो करनी है, लेकिन वी ट्राई आर लेवल बेस्ट एट यूसीपी स्पेशली टू प्रोवाइड आर स्टूडेंट्स विद एवरी फैसिलिटी। वी हैव द जिम, वी हैव द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर एंड वी हैव वंडरफुल कैफेटेरियाज के स्टूडेंट्स का एक हेल्दी एनवायरनमेंट में वो नर्चर एंड ग्रो कर सके।
1: जी जी, जैसे कि देखा जाता है कि यूसीपी का जो कैरियर सर्वे सेंटर है वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है इस फील्ड में कि बच्चे जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं वो प्रोफेशनली इन हो जाते हैं उन सारी चीजों में। जी लिसनर्स, तो ये था आज का शो। हमारे साथ दो रिस्पेक्टेबल गेस्ट थी, मैम तैयबा राना एंड मैम शीबा सुल्तान। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, एज अ प्रोफेशन आप इंग्लिश को किस तरह से परस्यू कर सकते हैं। मजीद इस तरह की और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जुड़े रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
4: खामोश भी हम हैं सुबह, हम हैं सबर, हम ही सजा, हम कातिब भी हम दास्तां।

0: ये है पाकिस्तान की आवाज UCP रेडियो FM 92.6।
1: पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: जी सामीन, वेलकम बैक. और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सर के फुल ब्राइट स्कॉलरशिप विन करने के लिए, और पाकिस्तान में रहते हुए जिन जिन चैलेंजेस का फेस करना पड़ा इनको. अभी हम उसके बारे में इनसे पूछेंगे कि डॉक्टर इमरान, आपको पाकिस्तान में, आपको पता है, बहुत सी हर्डल्स, जब भी हम किसी अच्छे काम की तरफ निकलते हैं बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. तो पाकिस्तान में आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और आपने उनको कैसे कॉप अप किया?
4: मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की नहीं बात करनी चाहिए. इंसान जहां पर भी पैदा हुआ है उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है. और हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे से ज़्यादा चैलेंजेस सहे थे और उन्होंने ज़्यादा तकलीफें सही. तो वह का इलाम इकबाल जैसे कहता है, खुदा तुम्हें किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह आप नहीं. तो इस तरह से अल्लाह ताला ने वो मौजे जो पैदा किए तो वो हमें मजबूत करने के लिए आती हैं. तो अगर हम सिर्फ अपना परस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स के और चैलेंजेस के मुतालिक बदल लें कि ये जो चैलेंज है, अगर मैं वजन नहीं उठाऊंगा तो मेरा जिस्म नहीं बनेगा. तो अगर हम चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी समझें तो हम ग्रो करते हैं, होप पैदा होती है और नेवर गिव अप की एक फिज़ा पैदा हो जाती है. और उसमें मेरा ख्याल, अगेन उसी बात पे मैं ज़्यादा एम्फोसाइज करूँगा, जोर डालूँगा कि अपने दोस्त अच्छे करें. अगर आप अपने अच्छे दोस्त करेंगे, अच्छे लोगों को सुनेंगे, FM 92.6 को सुनेंगे, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. या फैकल्टी आवर को कम लोग ही देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि फैकल्टी ने बात करनी है. लेकिन अगर हम सुनना चाहें तो ऐसे प्रोग्राम भी सुन सकते हैं. और प्रोफेसर और पढ़े लिखे लोग इतने बोरिंग भी नहीं होते जितना हमने बना दिया है.
3: जी डॉक्टर इमरान, नहीं नहीं, अब हमारा फैकल्टी आवर माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल जा रहा है और बहुत से लोग इसे सुनते हैं, बहुत सी उनकी राय भी हमें मिलती रहती है और हम उनके सजेशन को लेते हैं पॉजिटिवली भी और उनको मजीद भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं. अभी तो लोगों को बहुत इंतज़ार होता है इस फैकल्टी आवर का. तो अभी जो आप ये कह रहे हैं कि बहुत कम सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बहुत इम्प्रूव हो गया हुआ है.
4: तो थैंक यू. तो आपका जो सवाल था मुझे अच्छा लगा कि चैलेंजेस, अगर मैं वैसे इस चीज़ को अगर सही तरह से कहूँ तो चैलेंजेस ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं. और अगर हमने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करना हो तो कंफर्टेबल लाइफ गुजारना शुरू कर दें. वो बच्चे जो हर तरह की कंफर्ट में रहते हैं, पैम्पर्ड होते हैं, एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं हर टाइम, वो चाहते हैं कि वो उनकी पूरी दुनिया उनकी खिदमत के लिए मामूर हो जाए, तो वो कुछ खास काम नहीं कर पाते हैं. जितनी भी ज़िंदगी में या दुनिया में तारीख में बड़ी शख्सियात पैदा हुई हैं या उन्होंने कोशिश की है, वो हमेशा चैलेंजेस की वजह से ही उभरे हैं. और मेरा अपना ख्याल है कि हमारे तलबा को जो पढ़ रही है तालीम के अंदर, उनको वो छोटे छोटे मसाइल को हमने बहुत बड़ा बना दिया हुआ है. और उसकी वजह ये भी है कि हर बंदा कंप्लेन कर रहा है, हर बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है, हर बंदा ब्लेम कर रहा है. तो कंप्लेंट, बेशक मैं अक्सर क्लासों में भी कहता हूँ, तस्बीह भी पढ़ना शुरू कर दोगे कंप्लेंट्स की तो कंप्लेंट करने से मसला हल नहीं होगा, मसले को हल करने से मसला हल होगा और सोचने से मसला हल होगा. जैसे रट्टा जो है उससे बाहर निकलने से मसला हल होगा और ये जानने से मसला हल होगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक कैसे तरक्की याफ्ता हो गए. थोड़ा सा उसके बारे में गौर करेंगे, ये सवाल करेंगे कि वो भी, ये पिछले 200-250 साल की कहानी है, 200-250 साल की कहानी कहीं कॉस्मोस देख लें, नील डिग्रेस टाइसन का. अब तो हिंदी जबान में भी है, उर्दू जबान में भी है और AI का दौर आ गया है, कुछ भी जानना चाहें तो आप सीख सकते हैं. लेकिन उसके लिए चाहिए यही है कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझें, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी समझें और मेहनत करें.
3: जी डॉक्टर इमरान, तो सर थोड़ा सा हम आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे सामीन के बताएं कि जब आप अमेरिका से वापस पाकिस्तान आए तो आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी थिंकिंग में, आपके विजन में क्या चेंज आया और आपने यहाँ पाकिस्तान में आके क्या आपने चेंज क्या लेके आए?
4: मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. अगरचे बहुत सारे लोग मगरब नवाज हो चुके हैं, वो दूर के ढोल सुहाने हैं, वो ये समझते हैं कि शायद अमेरिका जाने के बाद डॉलरों की बरसात हो जाएगी और ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी, वो दूर से नज़र आता है. लेकिन वहाँ पर मेरा ख्याल है लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम इतनी मेहनत नहीं करते हैं पाकिस्तान में. वहाँ पर जो आम आवाम है हमारे जैसे, वो ज़्यादातर वक्त और अपने काम को काम समझते हैं और वो काम को काम करवाया भी जाता है. मजाक भी करते हैं, खेलते कूदते भी हैं, लेकिन काम को काम समझते हैं. हमने काम को भी खेल कूद बना दिया है और खेल कूद तो पहले से ही खेल कूद है. तो और ये जो एक चेंज थोड़ा सा आता है और कल्चरल शॉक लगता है, ये कुदरती बात है. जब मैं वापस आया तो वहाँ पर ज़्यादातर काम ईमेल के ज़रिए से होता था, गुफ्तगू, लोगों के पास वक्त नहीं होता है ज़्यादा बैठ के गप्पे मारने का, क्योंकि काम के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस होता है. सरमायादाराना निज़ाम है, उसको समझना चाहिए. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जवान मौजूद है, नौजवान मौजूद है. पाकिस्तान की आबादी 23 साल से नीचे तकरीबन 12 करोड़ है, तो 12 करोड़ बच्चे हमारे पास हैं। इन 12 करोड़ बच्चों को अगर हम सही तरह से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से मुराद इनको ट्रेन करें, इनकी तरबियत करें, तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमारे हमसायों वाले इंडिया और चाइना, वो इसी चीज को देखकर उन्होंने भी यही काम किया। वहां पर कुछ लोग पहले पढ़ने गए और फिर वापस आए और उन्होंने देखा कि हमारे मुल्क में ये चीजें बेहतर की जा सकती हैं, तो उन्होंने बेहतर की। और मैं उस तरह से सोचता हूँ। और वहाँ के जो चैलेंजेस हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में वैसे चैलेंजेस नहीं है, जैसे कि ड्रग्स का बहुत बड़ा मसला है वहाँ पर, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो कि इतनी हमारे मजहब के हवाले से या हमारा जो ब्रॉटअप हुआ उसके हवाले से इतनी अफोर्डेबल नहीं है। वहाँ पर आप अपनी औलाद को रेज करना नहीं चाहेंगे कम्फर्टेबली, क्योंकि हमारी कुछ अपनी वैल्यूज हैं, उनकी अपनी वैल्यूज हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि जिस वजह से मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है। चैलेंजेस वो पहले भी पाकिस्तान वैसा ही था, अब भी वैसा ही है, और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान काफी तेजी से तब्दील हो रहा है। अवेयरनेस ज्यादा आ रही है, लोगों को आगाही ज्यादा मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज के बारे में ज्यादा पता चल रहा है, और अपॉर्चुनिटीज दस्तरस में है जो चाहता है, और जो नहीं चाहता है तो उसके लिए कभी भी अपॉर्चुनिटीज थी नहीं।
3: जी डॉक्टर इमरान, तो आप हमारी जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपका काफ़ी विजन भी है, इंटरनेशनली भी आपने सारा विजिट किया और काफ़ी क्लोजली आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, तो हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को, स्पेशली हमारे यहाँ यूसीपी में, क्या ऐसी चीज़ें हैं, किन पैरामीटर्स को आपको फौरन जो अडॉप्ट करने की हमें ज़रूरत है, इस पर थोड़ी रोशनी।
4: अभी जो यूसीपी की रिसेंट लीडरशिप है, वो खुद भी फुल फाइटर है, वो भी दुनिया देखा है, और जिस तरह से वो चीज़ों को चला रहे हैं, और उनका एम्फोसिस जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ है, क्रिएटिविटी की तरफ है, इनोवेशन की तरफ है, अंडरग्रेड प्रोग्राम्स को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ है। तो यूसीपी ऑलरेडी एक रोल मॉडल बना हुआ है दूसरी लाहौर की यूनिवर्सिटियों के लिए। और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर परफेक्ट है, यहाँ पर चैलेंजेस नहीं है, यहाँ पर भी हैं और वो हर जगह पर होते हैं। इवन बेहतरीन से बेहतरीन इदारों में भी हमें लगता है कि कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ मसला होगा, और इंसान को पैदा इसलिए किया गया कि उन मसलों को हल करे, ना कि मसलों का अवेला करे। यूनिवर्सिटीज़ को ये अडॉप्ट करना चाहिए कि हमें रटे से बाहर निकलना चाहिए। और जब जिंदगी में, रियल लाइफ में, अगर मिसाल के तौर पर मैं घर जाता हूँ और यूपीएस खराब हो जाता है, तो वो एमसीक्यू नहीं बनेगा कि बताइए कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। वो तो कहेगा भाई मुझे बत्ती ला कर दो, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जब हमें ऐसा आम जिंदगी में जिस तरह से सवाल आता है, तो वो सवाल जो है वो कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होता कि इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसका ट्रू फॉल्स करना है, या फिर इसका एमसीक्यू बनाना है, या इसका पैटर्न हमें पता चले। तो इसी तरह से अगर हम अपने मसाइल को देखें तो, और अपने तालीमी निज़ाम को देखें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है, चाहे मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं फार्मेसी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये जानना है कि ये जो मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ इसका आम लोगों को या मुझे अपनी जात को किस तरह से फायदा हो सकता है। तो उससे फिर आपका इंटरेस्ट भी पैदा होगा, और ये चीज तमाम तालीमी इदारों को करने की जरूरत है, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, और ऑलरेडी हो रही है, लेकिन वो उन खास मखसूस तबकात के अंदर हो रही है। जैसे अगर हम पाकिस्तान के जो स्नोबिश इदारे हैं, जो काफी महंगे महंगे हैं, जिसमें साल की 10 लाख रुपए फीस है, वो यूसीपी एक अच्छा काम ये कर रही है। अमूमन लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ब्लेम करते हैं कि ये बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है कि इन्होंने हमारी यूथ को एक जगह पर कम से कम बिठा तो दी है। अगर ये भी ना होती तो पब्लिक सेक्टर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इन बच्चों को संभाल सकता। अब चूंकि ये बच्चे आ चुके हैं, तो अब हमें ये चाहिए कि इन बच्चों को नई राह दिखाएं, नई उम्मीद पैदा करें इनके अंदर, और ये दिखाएं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। किसी भी शोबे में चले जाएं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखें तो हमारे पास सिर्फ 700 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, 25 करोड़ की आबादी के लिए 700 इंडस्ट्री है, जबकि ये नंबर ईजिली बढ़ाया जा सकता है, और हम इसको 5,000-6,000 पे भी लेके जा सकते हैं। वो कैसे लेके जा सकते हैं, जब हमारे फार्मासिस्ट उस समय ट्रेन होंगे और ये सोचेंगे कि हमने सिर्फ दवाई जो है ना सिर्फ अपने मुल्कों को, अपने मुल्क के बाशियों को देनी है, बल्कि साथ में नेबरिंग कंट्रीज को भी देनी है, सायों वाले को भी देनी है। तो उस तरह से अगर हम सोचेंगे कि जॉब करने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि इस तरह से पढ़ना है कि हमने जॉब क्रिएट करनी है, फिर ज्यादा फायदा होगा, मेरा यही ख्याल है।
3: जी डॉक्टर इमरान, अभी जैसे आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात की, तो अभी क्योंकि एक टाइम होता है हमारी एक शॉर्ट सी ब्रेक है, और इसके वापस आके हम इंशाल्लाह यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या रोल प्ले कर रही हैं और उनकी क्या क्या हैं सारी चीज़ें। जी सामीन, कीप लिसनिंग FM 92.6 एंड लेट्स टेक अ ब्रेक।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: دو پتے پت جھڑ کے पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.
3: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya. Ki Duniya. Ki Duniya.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
1: Only on FM 92.6, UCP Ki Duniya.
0: Aap sun rahe hain University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
2: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की. ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की. तो सुनते रहिए FM 92.6, यूसीपी की दुनिया.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।